एम संसार मीडिया प्राली कावसोती 3 नवलपुर संपर्क ईमेल एम संसार मीडिया @gmail.com।

0: तपाईँ एन संसार अनलाइन एफएम सुन्दै हुनुहुन्छ।
1: अब सुन रहल बानी अनलाइन से प्रसारण हो रहल रेडियो एन संसार।
2: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ एन संसार अनलाइन एफएम।

तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ एन संसार अनलाइन एफएम एन संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल एन संसार मीडिया @gmail.com

0: एन संसार अनलाइन एफएम सुन्दै हुनुहुन्छ।
1: जब तुम पैदा होते हो तुमको कोई ध्यान नहीं है, तुम कौन हो क्या करते हो, क्या करना है क्या नहीं है। एक एक मिनट के आधार पे तुम जीते हो। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है, भूख लगी है, तकलीफ है क्योंकि डायपर किसी ने चेंज नहीं किया, तो नींद आ रही है, सो नहीं रही है, तो उससे माँ को पता लग जाता है कि कुछ चीज ठीक नहीं है। सोना क्या है, जागना क्या है, कुछ नहीं मालूम। यही चक्कर चलता रहता है। इसमें लगभग समझो 10 साल लग जाएंगे। फिर अगले 10 साल में सब चक्कर होगा। उसी अगले 10 साल में टीन एजर बनोगे, सिर्फ 10 साल। उसी 10 साल जैसे पहले 10 साल, वैसे ही दूसरे 20 साल।

शादी कोई जब 30 का होने लगता है उससे पहले ये सब कुछ होता है, नौकरी लग जाती है ये, क्योंकि नौकरी लग जाए फिर शादी भी अच्छी होगी, ग्रेजुएट भी उसी में होना है, क्या कहते हैं अगर कोई डिग्री लेनी है कॉलेज से वो भी उसी में होगी, ये सब कुछ कर करा करके सारी अच्छी तरीके से तुम अगले उस 10 साल में फंस जाओ। फिर अगले 10 साल में तुम क्या करोगे? फंसे रहोगे। पहले 10 साल में उस चक्कर से तुम निकलने की तुम्हारी इच्छा भी नहीं थी, अगले 10 साल में उससे भी तुम्हारी निकलने की इच्छा नहीं थी, अगले 10 साल में उससे भी निकलने की इच्छा नहीं थी, परंतु ये जो होंगे अगले तुम्हारी इच्छा होगी। कैसे निकलना है?

0: फिर ध्यान जाएगा तुम्हारा रिटायरमेंट की तरफ, जो अगले 10 साल में होना है, रिटायर भी होना है। और होगा क्या, पहले मंदिरों का चक्कर काटते थे, अब अस्पतालों का चक्कर काटो। ये हो गया, वो हो गया, डॉक्टर साहब ठीक कर दो। यही हो रहा है सबके साथ, चाहे कोई अमेरिका में हो, चाहे कोई हिंदुस्तान में हो, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे कोई कनाडा में हो, चाहे कोई साउथ अमेरिका में हो, चाहे कोई अफ्रीका में तो तुम जब सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो जरा सोचो कितना टाइम है। ज्यादा टाइम नहीं है, और इसी में करना है जो कुछ करना है। इसी में समझना भी है, अपने हृदय को भरना भी है, अपने आप को समझना भी है। तो उसके प्रति तुम क्या कर रहे हो?
1: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ इन संचार अनलाइन एफएम।

0: सूचना समाचार र मनोरञ्जनको एउटै नाम इन संसार अनलाइन एफएम।
1: एक समय था कि द्रौपदी को मालूम पड़ा कि कोई बहुत पहुंचे हुए संत आए हैं और उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, तो द्रौपदी तैयार हुई और गई। और जो संत आए हुए थे वो और कोई नहीं थे, वो थे वेद व्यास जी। तो वो वेद व्यास जी के पास गई, कहा महाराज मुझे आप बताइए मेरा भविष्य क्या है। तो वेद व्यास जी हंसते हैं, उससे कहते हैं मेरे को मालूम है तेरा भविष्य क्या है, तेरी वजह से करोड़ों लोग मरेंगे, तेरी वजह से खून की नदियां बहेंगी। द्रौपदी कहती है महाराज मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से करोड़ों लोग मरें, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से खून की नदियां बहें, कोई उपाय बताइए। वेद व्यास जी देखिए उस समय वो लिख रहे हैं महाभारत, तो वो कह सकते हैं द्रौपदी को कि कोई उपाय नहीं है, ये तो होगा ही, परंतु फिर भी क्योंकि वो दयालु हैं वो द्रौपदी से कहते हैं ठीक है मैं तेरे को बताता हूं, अगर तू नहीं चाहती है कि तेरी वजह से करोड़ों लोग मरें, तेरी वजह से खून की नदियां बहें, तो मैं तेरे को एक इलाज बताता हूं, तीन चीजें अगर तू करेगी तो ये कुछ नहीं होगा, खून की नदियां नहीं बहेंगी, करोड़ों लोग नहीं मरेंगे, तीन चीजें, सिर्फ तेरे को तीन चीजें करनी। क्या? ध्यान से सुनिए, आप भी इसको अपना सकते हैं, पर ध्यान से सुनिए। तो वेद व्यास जी कहते हैं एक, किसी का अपमान मत करना। किसी का अपमान मत करना, और अगर कोई तेरा अपमान करे तो गुस्सा मत होना। सुन रहे होंगे भाई बात? एक, किसी का अपमान नहीं करना। दूसरा, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो गुस्सा मत होना। और तीसरी चीज, अगर किसी ने तुम्हारा अपमान भी किया और तुम गुस्सा भी हो गए तो तीसरी चीज क्या नहीं करनी है, बदला मत लेना। ये तीन चीज अगर तू करेगी द्रौपदी तो तेरे कारण कोई नहीं मरेगा, तेरे कारण कोई खून की नदियां नहीं बहेंगी। खैर, महाभारत की कथा सुनी होगी भैया, वो कथा नहीं है ये महाभारत तो अब हो रही है। वो कोई कहानी नहीं है, ये तो यहां हो रही है। और तुम हो, तुम पे निर्भर है, तुम पे निर्भर है। वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो तो असली चीज है। और इस कहानी के बीच में अगर तुम तीन चीज कर सके किसी का अपमान न करो, कोई तुम्हारा अपमान करे तो गुस्सा मत हो, और अगर गुस्सा हो भी जाओ तो बदला मत लो। अगर ये तीन काम तुम कर सके तो ये दूसरी महाभारत बनेगी, जिसमें लड़ाई नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, जिसमें आनंद है, जिसमें सब लोग मिल के रहते हैं। महाभारत भी तुम्हारा भविष्य है और एक और भविष्य है तुम्हारा, जिसमें तुम शांति से, आनंद से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। यह भी संभावना है। तुमको यह चूज करना पड़ेगा कि तुम क्या चाहते हो। लड़ाई चाहते हो या शांति चाहते हो? जब तक तुम अपनी जिंदगी के अंदर यह संकल्प नहीं करोगे कि तुमको क्या चाहिए, यह महाभारत की लड़ाई एक ही दिन नहीं, दूसरे दिन भी होगी, तीसरे दिन भी होगी, चौथे दिन भी होगी, पांचवें दिन भी होगी, जब से उठोगे तब से और शाम तक ये महाभारत की लड़ाई होती रहेगी तुम्हारे हर दिन, जब तक तुम्हारा ये श्वास पूरा नहीं होता। तीन चीज पर ये वही कर सकता है, ये वही कर सकता है जिसकी बुझाऊ में नहीं, जो अपने आत्मबल को समझता है। एक बल यह है और एक बल अंदर का है। ये बल तो तुम उठक बैठक करके बना सकते हो, परंतु फिर भी एक ऐसा समय आएगा कि यह बल तुम्हारा काम नहीं करेगा। परंतु अंदर का जो बल है, आत्मा का जो बल है, अगर उसमें तुम ताकतवर हो तो वो ऐसा बल है कि तुमको बलवान बनाएगा। कब तक? जब तक तुम आखिरी श्वास नहीं ले लेते। वो है असली बल, वो है असली बल। मैं कहता हूं उस बल में बलवान बनो। वो जिस बलि के पास वो बल है, वो नफरत के बाण नहीं चलाता है, वो दया के बाण चलाता है।
0: You are listening to Ansansar Online.

0: तपाईँ एन संसार अनलाइन एफएम सुन्दै हुनुहुन्छ।
1: इस संसार के अंदर जब लोगों से ये चर्चा होती है कि ऐसी कोई चीज है, शांति भी कोई चीज है, तो सबसे पहले लोग यही कहते हैं कि जी ये तो असंभव है। हम कहते हैं क्यों असंभव है, काय के लिए असंभव है। अब लोगों के साथ ये है कि ये कैसे करोगे, तो हम लोगों से यही कहते हैं कि भाई अगर ये जो अशांति है संसार के अंदर, अगर वो भेड़ों की वजह से हो या बकरी की वजह से हो या बंदरों की वजह से हो, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भेड़ के साथ कैसे बात करें कि तू क्रांति मत फैला, या बकरी से कैसे कहें कि तू क्रांति मत फैला। परंतु ये सब चक्कर मनुष्य का बनाया हुआ है, और मनुष्य एक ऐसी चीज है कि अगर उसकी समझ में आ गया तो वो बदल सकता है। जैसे रत्नाकर डाकू था, जब उसकी समझ में आया तो वो भी बदल गया। तो बड़े बड़े भी बदल सकते हैं अगर उनकी समझ में आ जाए। तो मैं तो ये कहता हूं लोगों से कि ये तो बड़ी खुशखबरी है कि ये मनुष्य ने फैलाई, क्योंकि कम से कम अगर मनुष्य ने फैलाई है तो वो उसको खत्म भी कर सकता है अगर उसके समझ में आ जाए। तो हम तो दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई जगह मैंने कहा कि मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। जब टीवी पे इंटरव्यू होता है, रेडियो पे इंटरव्यू होता है, क्या लाया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है। क्या है वो तोहफा? एक अलग सोचने का तरीका, क्योंकि आज जो भी मनुष्य सोच रहा है, जब उसको दुख होता है तो वो किसकी तरफ उंगली फैलाता है? भगवान की तरफ, कि भगवान उसको दुख दे रहा है, ये उसके कर्मों का फल है। अब कर्म क्या होते हैं तुमको कैसे मालूम? कर्म होता क्या है तुमको कैसे मालूम? और जो तुम कहते हो कि ये पिछले जन्मों का फल है, पिछले जन्मों का ये है, ये तुमको कैसे मालूम? किसी ने कभी कह दिया, माँ बाप ने कह दिया पिछले कर्मों का फल है, तुमने स्वीकार कर ली। उसके बाद तोते की तरह रटते रहे, पिछले कर्मों का फल है, पिछले कर्मों का फल है, पिछले कर्मों का, तकदीर का फल है, तकदीर का फल है, तकदीर का फल। और आधे से ज्यादा अगर तुम अपनी क्या कहते हैं समस्याओं को दूर करना चाहते हो, तो बैठ करके ये सोचो कि कितनी चीज तुमने रट लगा के सीखी हुई है और कितनी तुमने अनुभव से सीखी हुई है। और जो रट लगा के सीखी हुई हैं चीजें, उसके बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते। जैसे पानी को भाषा जो है ना, वो भी रट लगा के सीखी जाती है, उसका कोई तुक नहीं है भाषा का। तुमने सुना अपने माँ बाप को बोलते हुए और तुमने भी सीख लिया। तो पानी को पानी क्यों कहते हैं? नहीं मालूम? एक को एक क्यों कहते हैं? हैं? नहीं मालूम? क्योंकि ये सब रट से सीखा है। और अनुभव से क्या सीखा है? माँ ने कहा इसे मत छू, ये गर्म है, यही पर्याप्त था तुम्हारे लिए। जब तुम छोटे थे, माँ ने कहा इसको मत छू, ये गर्म है, यही पर्याप्त था। छुआ, जब छुआ तब एहसास हुआ ये गर्म है और इसे जलता है, इसे दर्द होता है। उसके बाद अनुभव से तुमने सीखा, और आज तुम भी लोगों को सिखाते हो इसको मत छू, ये गर्म, इसको मत छू, ये गर्म। तो ये बात है सारे संसार की। किसी ने किताब से पढ़ लिया, रट लगा ली, मतलब क्या है उसका? जब महाभारत खत्म हो गई और अर्जुन अपने महल में चले गया, सब लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई, तो भगवान कृष्ण एक दिन अर्जुन से मिलने के लिए गए। तो अर्जुन से मिलने के लिए गए तो कहा भाई क्या हालचाल है? कहा सब ठीक है। क्या हो रहा है? कहा नहीं सब ठीक है, इतने साल वनवास में रहे, बड़ा अच्छा लगता है, महल में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, सब हैं, सब कुछ बढ़िया है। कोई कष्ट नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई प्रश्न नहीं। हाँ एक प्रश्न है, क्या कि जी जो आपने वो बताया था ना, वो गीता जो जो कुछ भी ज्ञान दिया था वो मैं भूल गया। वो मैं भूल गया तो कृपा करके मेरे को दोबारा बता दो। अब उसमें दो बातें हैं, एक तो वो फर्स्ट नॉलेज रिव्यू था, पहला नॉलेज रिव्यू वो भूल गया। और जहां तक रही गीता की बात, भगवान कहते हैं मेरे को भी याद नहीं। अब जो सुना दिया तेरे को उस समय सुना दिया, अब ये थोड़ी है कि मैंने याद करके सुनाया। और यहां लोग लगे हुए हैं उसको याद करने में, सीखने में नहीं, समझ में नहीं आएगी बात, पर उसको रट तोते की तरह उसको सीखने में लगे। तो जब तक ये चक्कर तुम्हारी जिंदगी में भी चलता रहेगा तो तुम आगे थोड़ी जा पाओगे। एक कहावत है अंग्रेजी में कि उड़ने के लिए पर नहीं चाहिए, उड़ने के लिए पर नहीं चाहिए, पर जो जंजीरें ने तुमको बांध के रखा हुआ है इनको काटने की जरूरत। अगर ये कट जाए तो तुम अपने आप ही उड़ने लगोगे। और ये जंजीरें हैं किस चीज की? यही सब भावनाओं की जो लोगों ने बना रखी। अनुभव किसी का कुछ है नहीं। आज मेरे से पूछा गया प्रश्न में, तो जो इंटरव्यू हो रहा था उसमें पूछा कि आप भगवान से मिले हैं? मैंने कहा मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो जिसको जो कभी अलग ही नहीं हुआ उससे मिलना क्या है? जो कभी अलग ही नहीं हुआ उससे मिलेंगे कैसे? वो तो हमेशा ही साथ है। मैंने कहा अनुभव की बात है, अगर अनुभव की बात करो, अनुभव है तो हाँ अनुभव है। तो उसने कहा कैसे, आपको कैसे मालूम कि भगवान है? मैंने कहा कि नर्तन भववारित कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये शरीर इस भवसागर को पार करने का साधन है और इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। तो मैंने कहा जब तुम्हारा श्वास अंदर आता है और जाता है इसका मतलब है क्या? भगवान है, क्योंकि यही उनकी कृपा है और यही कृपा है, इसी से शरीर चलता है। तो बात यह है, अब ये सारी जो कुछ भी हो रहा है इस संसार के अंदर, और क्या फिर अब फिर मनुष्य दुखी होता है? अब फिर मनुष्य दुखी होता तो कहता है भैया मेरे को दुख क्यों मिल रहा, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, ये कब होगा, ये कब होगा? तो जब तक हम समझ नहीं पाएंगे अपने जीवन को तब तक तो दुख आएगा ही आएगा। और जिस दिन समझ लेंगे कि हमको मांगने की कुछ कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो हम मांग भी नहीं सकते हैं वो हमको मिल रहा है, और किस रूप में मिल रहा है? उस श्वास के रूप में मिल रहा है। अब कैसे मांगे इसको, हम तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले तुम मनुष्य, मनुष्य के नाते तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है जा रहा है। तुमको ज्ञान के द्वारा ये विधि मिली है कि तुम उस चीज को समझ सको, उसका तुम अनुभव कर सको। जब तुम उसका अनुभव करते हो तो क्या मिलता है? उसके बदले में जो प्रसाद तुम्हें मिलता है उसको शांति कहते हैं। उस शांति का प्रसाद जो तुमको मुफ्त में दिया जा रहा है उसको ग्रहण करो, उसको फेंको मत, उसको ग्रहण करो। क्योंकि लोग हैं शंका करना चाहते हैं, शंका करना चाहते हैं। क्यों शंका करना चाहते हैं? ये तुम्हारे में आदत कहां से आई?
0: यू आर लिसनिंग संसार ऑनलाइन FM।
1: हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ लोग शंका करते हैं, ये आदत। अब दाल में तो है नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में दाल बहुत खाते हैं। कहां से आई याद है जब तुम छोटे थे, देख के काम कर, गलती मत कर। ये बात भी तुम्हारे दिमाग में डाली हुई है कि तुमको शंका करनी चाहिए। और तुम ऐसे भक्त हो रट के, रट लगाने के, हर एक चीज पे शंका करते, भगवान है या नहीं है, मुझे मंदिर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वही जब इम्तिहान देने के लिए जाते हैं, क्या मैंने सही जवाब दिया, क्या मतलब सही जवाब दिया, क्या मतलब सही जवाब दिया, आता था या नहीं आता था, आता था तो आता था, नहीं आता था तो नहीं आता था। प्रशंसा करने की क्या जरूरत है? जब घर में खाना बनाते हो तो बैठे बैठे शंका करते रहते हो ना, चखते हो नमक ज्यादा है कम है, चखते हो, शंका का तो सवाल ही नहीं है, थोड़ी क्या बैठे बैठे दाल गल गई नहीं गली, टाइम तो हो गया पर हो सकता है नहीं गली हो, नहीं उसको उठाते हैं गरम गरम, कोई उठाते हैं और चावल को देखते हैं कि वो बन गया, भात बन गया या नहीं, नहीं। तो फिर जब ये ज्ञान की बात आती है तो फिर शंका क्यों? अपने हृदय से पूछो, अपने अनुभव से पूछो। तुम जीवित हो, जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे पे कृपा हो रही है, और क्या चाहिए तुमको, और क्या चाहिए सब, मतलब ये तो इसके बाद जो भी तुम इस दुनिया के अंदर करना चाहते हो ये संभव है, कोई असंभव नहीं है, संभव है। परंतु सबसे पहले क्या चीज चाहिए? तुम्हारा जीना होना बहुत जरूरी। अगर तुम जीवित नहीं हो तो फिर सब कुछ असंभव है, और तुम जीवित हो तो फिर सब संभव है। इसके लिए हिम्मत की जरूरत है, हिम्मत भी तुम्हारे अंदर है, हिम्मत भी तुम्हारे अंदर। और जो कुछ भी तुम चाहते हो इसके बारे में भी सोचो। तुम वहां बैठे बैठे सोच रहे होगे कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे जी, वही संशय है ना, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। अब इसका उदाहरण देता हूं मैं, और लोगों को बड़ा पसंद आता है ये उदाहरण, और इंटरव्यू भी मैंने बहुत बार दिया हुआ है कि जब तुम छोटे बच्चे थे और चलना सीख रहे थे, तुम गिरे कि नहीं गिरे, तुम्हारा उद्देश्य क्या था, चलना, पर गिरे, फेल हुए कि नहीं हुए, असफल हुए या नहीं हुए, परंतु तुमने असफलता को कभी स्वीकार नहीं किया, फिर दोबारा खड़े हुए। और आज क्या करते हो? करने से पहले, कोशिश करने से पहले सोचते हो किसके बारे में? असफल, सफलता के बारे में, असफलता के बारे में। और जैसे ही सोचते हो सफलता के बारे में, करेंगे पहले असफलता, पहले असफलता। यही तो बीमारी है सारी दुनिया को, पहले असफलता। पर कोशिश तो करो, जैसे बच्चा करता है खड़ा होके, और जब पहले वो कदम लेता है उसको मालूम है ना कि वो चल भी रहा है, बस तत तत तत तत, उसको दिशा क्या कोई ज्ञान नहीं है, उसकी जस्ट उसके जीवन के अंदर उस समय ऐसी प्यास है चलने के लिए, ऐसी चाह है चलने के लिए, जो उसको किसी ने सिखाया नहीं है, क्योंकि वो समझता नहीं है अभी बात जरूरी क्या है जरूरी क्या नहीं है, वो चल देगा चल देगा, और अगर असफल भी हुआ उसको स्वीकार नहीं करेगा, फिर खड़ा होगा। ये हिम्मत नहीं है तो क्या है? और जब इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे पास इतनी हिम्मत थी, आज तुम्हारी हिम्मत को क्या हो गया? मतलब तुम जीवित भी हो और तुमने जीवन को त्याग भी दिया है। अभी मौत नहीं आई है पर जीवन को भी तुमने त्याग दिया, क्या होगा मेरा? जो असफलता को स्वीकार करना ही नहीं चाहता, ना वो सीखना चाहता है उस असफलता को, ना उसको स्वीकार करना चाहता है। जितनी बार वो गिरेगा उसको कोई गम नहीं, वो फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि चलना उसके लिए बहुत आसान है। वही चीज जो असंभव थी, क्योंकि जब वो पहले पहले सीखता है ना तो उसके पैर काबिल नहीं है उसका वजन उठाने के लिए। धीरे धीरे उसकी जो मसल्स हैं इनको स्ट्रांग होना पड़ेगा, और जो बैलेंस है वो उसके पास नहीं है, पर धीरे धीरे उन सारी चीजों को वो सीखता है, और जब सीख लेता है तो वो चलना शुरू करता है। अब हम बड़े हो गए हैं, परंतु वो चीजें हमारे लिए, वो कानून अभी बदला नहीं। जिस भी चीज में हमने असफलता को स्वीकार कर लिया उसमें हम असफल जरूर होंगे, पर जब असफलता को स्वीकार नहीं किया, हिम्मत से आगे चले, हिम्मत से आगे बढ़े, तो वो सफलता भी जरूर मिलेगी। ये बात है, ये बात इसको समझो। कुछ भी हो तुमको जीना है, जब तक ये श्वास आ रहा है तुम्हारे अंदर तुमको जीना है, और हारे हुए की तरह नहीं जीना, जीते हुए की तरह जीना। ये नहीं कि तुम्हारी क्या उम्र है, ये भी एक असफलता का बहाना है, क्योंकि जो तुम्हारा दिमाग है ना इसमें कुछ बुड्ढा नहीं होता है, इस खोपड़ी में कुछ बुड्ढा नहीं होता है, जो खाल है ये हो जाती है, पर अंदर जो बैठा हुआ ना इसे ये कभी बुड्ढा नहीं होता है। और लोग कहते हैं जी हमारी याददाश्त चले गई, जैसे जैसे तुम्हारी याददाश्त कहीं नहीं गई, तुमको अभी भी अपना बचपना याद है, तुमको अपने कपड़ों के बारे में याद है कि कैसे कैसे कपड़े तुमने पहने, कि तुमको स्कूल के बारे में याद है, तुम्हारे सब कुछ वहीं का वहीं है। बात यह है कि ये जो भूलने की बात होती है मनुष्य की, ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि तुम जब इस उम्र के हो गए हो तो बहुत सारी चीजें तुमको याद करनी पड़ती हैं। जब तुम छोटे थे तुमको बहुत कम याद करने की जरूरत थी, तो याद करने में आसानी रहती थी, यहाँ ये है वहाँ ये है, अब उसको फोन करना है, वहाँ ये जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि दिमाग तो अपने आप, चाहे तुम 18 साल के भी हो, पर अगर इतनी चीज़ें हो जाएंगी तो तुमको याद नहीं रहेंगी, चाहे किसी भी, ये मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, ये वैज्ञानिक फैक्ट है, ये वैज्ञानिक बात है, इस पर रिसर्च की है विज्ञान के लोगों ने, साइंटिस्ट ने, और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कुछ होता जाता नहीं, सब सब ऐसा का वैसा ही है। तो अब शरीर है, अब लोग कहते हैं जी हम चलने में दुख होता है, ये तो कोई बात नहीं, आनंद लेने के लिए, इस जीवन का आनंद लेने के लिए मील, दो मील, तीन मील चलने की जरूरत नहीं, कहीं भी हो तुम, अपने खाट पे ही बैठे हो, तो जो अंदर का आनंद है इसको तो तुम ले सकते हो। जब तक तुम जीवित हो ये आशीर्वाद, इसीलिए ये आशीर्वाद है, और ये जब तक आ रहा है जा रहा है इसको स्वीकार करो। और असफलता की जंजीर काटो।
0: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हिन्द संचार अनलाइन एफएम।

0: You are listening M Sanchar Online FM.
1: अगर मनुष्य नहीं होता तो शहर होते, मनुष्य नहीं होता तो देश होते, मनुष्य नहीं होता तो चंद्रमा कौन जाता, मनुष्य नहीं होता तो तीर्थ कहां से बनते, मनुष्य नहीं होता तो मंदिर में पूजा करने के लिए कौन जाता। समझने की बात है कि अगर मनुष्य नहीं होता तो धर्म को मानने वाला कौन होता। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तन पाओ। मंदिर जाते हैं लोग, किनकी लाइन लगती है, भगवान की लाइन नहीं लगती। मंदिरों में भक्तों की लाइन लगती है, भक्त होते कौन है, मनुष्य तो होते। अब सारी कथाओं में, सारी चर्चाओं में भगवान की चर्चा तो हो गई, भगवान की चर्चा तो हो गई, देवी देवताओं की चर्चा तो हो गई, पर एक की चर्चा नहीं हुई और वो कौन है। मनुष्य, तुम्हारी चर्चा नहीं हुई कि तुम कौन हो, क्या हो। लोग पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, भगवान के गुण गाते हैं, अच्छी बात है, भगवान के गुण गाना किसी भी रूप में अच्छी बात, परंतु तुम ये भूल गए हो कि भगवान तुम्हारे गुण गाते हैं। अच्छा, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या तुम अपने आप को सचमुच में, मतलब हां हां हां मैं नहीं, सचमुच में भाग्यशाली समझते हो? नहीं, सोचो जरा, तुम समझते हो कि अगर तुम्हारा भी मकान 4 मंजिल का हो तो हो सकता है तुम अपने आप को भाग्यशाली। जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, इम्तिहान देते हैं, जब उनका रिजल्ट निकलता है, अगर ऊपर नाम है, अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो अपने आप को आदमी भाग्यशाली समझता है। नीचे मार्क्स मिले हैं, अपने आप को भाग्यशाली नहीं समझता। बस में बैठने वाला जब मोटरसाइकिल वाले को देखता है तो वो कहता है कि ये भाग्यशाली है, और वो तब जब बस के लिए इंतजार कर रहे हो और इधर से आया कोई अपना भर करके चला गया, तो बस में जो इंतजार कर रहा है बस की, वो समझता है कि ये जो मोटरसाइकिल वाला है ये बड़ा भाग्यशाली है। जब बारिश होती है तो मोटरसाइकिल वाला कार वाले को भाग्यशाली समझता है, उससे पहले तो फिर मोटरसाइकिल वाला जो है वो भर भर करके चला रहा है, परंतु जब बारिश होने लगती है तो वो सोचता है कार होती तो रुकना नहीं पड़ता, चलते रहते। मतलब यह है कि तुमको क्या मिला है, तुम्हारे पास क्या है, क्या संभव है इस संसार के अंदर तुम्हारे जीवन में, इसकी चर्चा नहीं होती है, इसकी चर्चा नहीं होती। और सारी बातों की चर्चा होती है। और हम इस बात की चर्चा करना बहुत पसंद करते हैं जिसमें तुम्हारा गुणगान गाया जाए। कई लोग यहां बैठे होंगे कह रहे होंगे कि भगवान का गुणगान गाना चाहिए, मनुष्य का नहीं। परंतु जैसे ही मनुष्य का गुणगान चालू करोगे, भगवान का तो अपने आप उसमें नंबर आ जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, तुम उसको समझो कि ये काया मिली है, ये नर्तन मिला है, नर्तन मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, और इससे क्या तुम पा सकते हो, क्या संभव है? तो सुनो, ये है असली मंदिर। क्यों है असली मंदिर? क्योंकि सारे मंदिर होने के बावजूद भगवान परमपिता परमेश्वर उसने अपना मंदिर, उसने अपना धाम तुम्हारे हृदय में बनाया है। लोग बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, मार्बल के मंदिर बनाते हैं, मार्बल के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, सोने का ऊपर कलश लगाते हैं, गेट लगाते हैं, सजाते हैं। परंतु भगवान ने उन सब मंदिरों के होने के बावजूद भी क्या पसंद किया? तुम्हारे हृदय को पसंद किया। तुम्हारे हृदय को पसंद किया। और ये जो भगवान जो तुम्हारे हृदय में बैठा है, ये नाचता भी है, ये तुमको धीरज भी दिलाता है, तुम्हारे साथ सदा रहता है जब तक तुम जीवित हो, रात दिन। ये भगवान जो तुम्हारे अंदर बैठा है, इसकी पूजा करो। और इसकी पूजा फल से नहीं होगी, फूल से नहीं होगी, इसकी पूजा दिया जलाने से नहीं होगी, इसकी पूजा आरती करने से नहीं होगी, इसकी पूजा मंत्र पढ़ने से नहीं होगी, इसकी पूजा सच्चे हृदय से होगी, क्योंकि वो सच्चे हृदय में बैठा है। और छल कपट को त्याग करके, ये आसान काम नहीं है, छल कपट त्याग, छल कपट त्यागना आसान काम नहीं है, ये अच्छे अच्छे नहीं कर सकते हैं। जब हम बच्चे होते तभी से हमको सिखाया जाता है छल करना, कपट करना, झूठ बोलना। कई बार बच्चों के साथ होता है, कोई आया दरवाजे पे, बच्चा गया, तेरे पिताजी अंदर हैं? एक मिनट, पिताजी आपके, आपको कोई पूछ रहा, उससे कह दे मैं यहां नहीं हूं। अब बच्चे के दिमाग में भी तो कुछ होगा नहीं, मेरे प्यार। कई बार तो बच्चे इतने भोले भाले होते हैं कि दरवाजे के पास जाएंगे, कहेंगे मेरे पिताजी ने कहा कि वो यहां नहीं है। पर शुरू से ही उल्टी सीधी बातें हमको लोग सिखाना शुरू करते हैं, हम धीरे धीरे सीखते हैं, सीखते हैं, सीखते हैं, सीखते हैं, सीखते हैं, सीखते हैं, सीखते हैं। अपने आप से कपट करना सीखते हैं। मास्टर ने गृह कार्य दिया, गृह कार्य नहीं किया, फिर भी स्कूल पहुंच गए और किताब ऐसे खोल के बैठे हैं जैसे सारा कुछ कर लिया है, ताकि कहीं मास्टर देखे तो उसको लगे कि हो गया है इसका भी। सभी से छल कपट करना शुरू करते हैं, परंतु तुम्हारी ये जिंदगी छल कपट करने के लिए नहीं है। इसमें एक चीज हो रही है जिस पे तुमको ध्यान देना चाहिए, और वो चीज है इस श्वास का आना और जाना। तो कहानी क्या है? कहानी है तुम्हारी। ये सब तुम्हारे लिए उपलब्ध है, ये तन तुम्हारे लिए उपलब्ध है, ये श्वास तुम्हारे लिए उपलब्ध है, ये परमपिता परमात्मा तुम्हारे लिए उपलब्ध है। किस चीज की देर है तुम्हारे? किस चीज के लिए रुक रहे हो? किस चीज के लिए अपने जीवन में कहते हो कि अभी नहीं? क्यों तुम्हारे को संकोच? लोग लग जाते हैं सुख दुख की बात करने में। हम जो अच्छा नहीं है, जो अशुभ है, उससे बच जाएं। मैं समझाता हूं, समझो मेरी बात। तुम जूते क्यों पहनते हो? तुम जूते क्यों पहनते हो? ताकि वो तुम्हारे पैर में अच्छे लगे ना? जूते क्यों पहनते हो? क्योंकि तुम सारे संसार के कांटों को नहीं हटा सकते, सारे संसार के पत्थरों को नहीं हटा सकते, सारे संसार की जगह को साफ नहीं कर सकते, परंतु तुमको कांटे न लगे, पत्थर न लगे, तुम्हारे पैर में चोट न लगे, तुम सारे रस्तों पे जूता चमड़े का जो बनता है, कभी रबड़ का बनता है, कभी रबड़ नहीं लगा सकते सब जगह, परंतु हाँ एक जगह लगा सकते हो, अपने पैर पे। नहीं तो अपने पैर पे अगर जूता बांध लिया तो कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, वही बात हो गई जैसे सब जगह हो गए। नहीं, अब जहां जाओगे अगर कांटा भी होगा कोई बात नहीं, जूते को लगेगा, तुमको नहीं लगेगा, बच गए ना कांटे से।
0: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हिन्दसञ्चार अनलाइन एफएम।
1: इसलिए हम जूता पहनते, इसलिए जूता पहनते। कपड़े क्यों पहनते? कपड़े क्यों पहन? जब जब ठंडी होती है तो तुम जैकेट पहनते हो ना, गरम जैकेट। गरम जैकेट क्यों पहनते हो? क्योंकि तुम सारे तापमान को गरम नहीं कर सकते हो। पर बात सारे तापमान को गरम करने की नहीं है, अपने को गरम करने की है। तो अगर टेम्परेचर को तुम नहीं बढ़ा सकते हो तो कम से कम जैकेट पहन के अपना तो टेम्परेचर ऊपर कर सकते हो। इसलिए तुम जैकेट पहनते, इसलिए तुम जैकेट पहनते। मैं क्यों बता रहा हूं तुमको? तुम अशुभ से बचना चाहते हो, तुम अगर अशुभ से बचना चाहते हो, तुम तो लगे हुए हो सारे अशुभों को खत्म करने के लिए। वो नहीं होगा। अशुभ से बचना है तो सारे अशुभों के पीछे मत पड़ो। देखो, अगर एक कमरे में अंधेरा है, अंधेरा है, उजाला नहीं है, अंधेरा है, और मैं कहूं कि इस कमरे में अंधेरा है, यहां उजाला होना चाहिए, तो तुम क्या करोगे? बाल्टी लेकर के अंधेरे को कमरे से बाहर फेंकने की कोशिश करो। खाली बाल्टी ली, अंधेरे से भरा और फिर खिड़की के पास गए और बाहर फेंक दी। करोगे?

दिया जलाओगे, दिए में से प्रकाश निकलेगा, अंधेरा अपने आप ऑटोमेटिक भाग जाए। तुम अशुभ से बचना चाहते हो? अशुभ से बचने का एक ही तरीका है, अपने जिंदगी में शुभ को लाओ। शुभ क्या है? क्या है शुभ? इस ज्ञान का अनुभव शुभ है। जब तुम बैठ के इसका अभ्यास करते हो, उससे शुभ और कोई नहीं है, और कोई चीज नहीं है। जहां तुम अपने जिंदगी में शुभ को लाए, अशुभ अपने आप भागेगा। कहां जाएगा? अपने आप भागेगा। जिसको मालूम नहीं है, जो अज्ञानी है, वो चक्कर में पड़ा हुआ है कि अशुभ को कैसे दूर करें। कभी कहीं जाते हैं लोग, कभी कहीं जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं अशुभ से बचने। लोग हैं कई बार, अब मैंने देखा एक आदमी को खूब सारी अंगूठी पहनी हुई थी उसे। मैं तो अंगूठी भी पहनता नहीं, तो मेरे को एक, मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा ये इस आदमी ने इतनी अंगूठी क्यों पहन रखी है? एक पहन ली कोई बात नहीं, समझ सकते हैं, उसने तो अंगूठे में भी पहन रखी, उंगली में भी, हर एक उंगली में पहन रखी। तब किसी ने मेरे को बताया कि इसको बताया गया ये पहनने से ही अशुभ से बच जाएगा, ये अशुभ से बच जाएगा, अशुभ से बच जाएगा, अशुभ से बच जाएगा, अशुभ से बच जाएगा, अशुभ से बच जाएगा। मैंने कहा इसके पीछे बहुत ही अशुभ लगा हुआ है। और जिसने इसको अंगूठी बेची उसका तो हो गया अशुभ, उसको तो पैसे मिले, उसका तो हो गया अशुभ। और ये बेचारा अब अंगूठी अंगूठी अंगूठी लेकर के जहां जाए अंगूठी अंगूठी अंगूठी अंगूठी पर। भगवान की कृपा है उसके ऊपर कि उसके अंदर ये श्वास आ रहा है, वो जीवित है, इसको वो शुभ नहीं समझता। क्या समझाएं हम? क्या समझाएं हम? कृपा तो सब पे है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है इस संसार के अंदर जिसके ऊपर भगवान की कृपा ना हो, परंतु उसको जानने वाले बहुत कम। मैं चाहता हूं कि तुम जानो उस बात को, इसीलिए तुम मेरे पास आए थे। समझो, ये बहुत प्यारी प्यास है। अगर ये प्यास नहीं होती तो तुम आज यहां नहीं बैठे होते, क्योंकि ये प्यास है तुम आज यहां बैठे हो। और तुम क्यों बैठे हो? तुम क्यों बैठे हो? क्योंकि यह संभव है कि तुम्हारे अंदर जो परम पिता परमात्मा स्थित है उसका तुम अनुभव कर सको। यह है तुम्हारी कथा, यह है तुम्हारी कथा। यह भगवान की कथा नहीं थी, यह तुम्हारी कथा है। अच्छी कहानी है, अच्छी कथा है, जिस कथा में मनुष्य ने अपने जीवन में उस चीज को स्वीकार कर लिया। और वो कथा, वो कहानी बहुत गलत है जिसमें मनुष्य आया, खाली हाथ आया और खाली हाथ यहां से चला। लोग हैं, कई लोग हैं, हम देखते हैं कोई अपनी अच्छी सूरत पे फिदा है, बस कर लो, पर ये हमेशा सूरत ऐसी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। आज यहां आती वक्त हमने देखा एक लड़की बड़ी सजी हुई धजी हुई, बड़ी सुंदर लग रही, 2 मिनट बाद एक बुढ़िया झुरियों से भरी हुई, पता नहीं कितना समय हो गया उसको नहाए हुए,

0: बैठी हुई। देखो कुदरत का खेल, कुदरत का खेल है और इसको तुम पलट नहीं सकते, पलट नहीं सकते, ये होगा। परंतु एक चीज है जिसमें झुर्रियां नहीं आएंगी, एक चेहरा है जिसमें झुर्रियां नहीं आएंगी, एक आंख है जिसमें चश्मे पहनने की जरूरत नहीं होगी, एक कान है जिसमें ऊंचा सुनने की जरूरत नहीं होगी, और वो तुम्हारा अंदर हृदय वाला कान है, हृदय वाली तुम्हारी सूरत है जिसमें झुर्रियां नहीं आएंगी। अगर उस सूरत को समझ गए, उस अपनेपन को समझ गए, तो तुमको बुढ़ा होने की जरूरत नहीं होगी। शरीर से तो तुम हो गए, परंतु अंदर से तुम नहीं होगे, और अंदर की बात समझ लो, और तुम्हारी खूबसूरती हमेशा के लिए बनी रहेगी, क्योंकि तुम्हारी अंदर की खूबसूरती तुम्हारी नहीं, उस परमपिता परमेश्वर की खूबसूरती। शांति की झलक तुम्हारे चेहरे पे होनी चाहिए, शांति की झलक उसकी खूबसूरती बहुत ही दूसरी है। अरे तुम चाहे कितना भी लिपस्टिक लगा लो, चाहे कितना भी दाढ़ी बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, पर जब शांति की झलक तुम्हारे चेहरे पर क्या कहते हैं बहती है, उस सुंदरता का कोई अंत नहीं। उस सुंदरता का वो है असली सुंदरता। लाओ उस झलक को, लाओ अपने जीवन में उस झलक को लाओ। जो समझना चाहता है उसको हम समझा सकते हैं, पर जो समझना ही चाहता हम क्या करें। जो कान होते हुए भी बहरा है उसको क्या कहेंगे, जो आंख होते हुए भी अंधा है उसको क्या कहेंगे, क्या दिखाएंगे, क्या समझाएंगे, कुछ नहीं समझा सकते। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी का संशय किसी चीज से बढ़ता है, किसी का संशय किसी चीज से बढ़ता है। ये जिंदगी संशय के लिए नहीं है, ये जिंदगी है आनंद लेने के लिए। ये है तुम्हारी कथा, ये है तुम्हारी कथा, ये एक दिन की कहानी नहीं है। यही तो बात है ना, ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये कहानी है तब तक की। तब तक तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे जब तक तुम अपना आखिरी श्वास न ले लो। हम चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन तब तक आनंदमय रहे, तब तक आनंदमय रहे जब तक तुम आखिरी श्वास न ले लो, तब तक की बात कर रहे हैं। और यह संभव है, यह संभव है। एक चेहरा है जिसमें झुर्रियां नहीं आएंगी, एक आंख है जिसमें चश्मे पहनने की जरूरत नहीं होगी। अगर उस सूरत को समझ गए, उस अपनेपन को समझ गए, तो तुमको बुढ़ा होने की जरूरत नहीं होगी। शरीर से तो तुम हो गए, परंतु अंदर से तुम नहीं होगे, और अंदर की बात समझ लो, और तुम्हारी खूबसूरती हमेशा के लिए बनी रहेगी, क्योंकि तुम्हारी अंदर की खूबसूरती तुम्हारी नहीं, उस परमपिता परमेश्वर की खूबसूरती। शांति की झलक तुम्हारे चेहरे पे होनी चाहिए, शांति की झलक उसकी खूबसूरती बहुत ही दूसरी है। जब शांति की झलक तुम्हारे चेहरे पर बहती है, उस सुंदरता का कोई अंत नहीं। वो है असली सुंदरता। लाओ उस झलक को, लाओ अपने जीवन में।
1: तपाईं एन संसार अनलाइन एफएम सुन्दै हुनुहुन्छ।

0: सूचना समाचार र मनोरञ्जनको एउटै नाम एन संसार अनलाइन एफएम।
1: बात यह है कि जिसने अपने जीवन के अंदर असली प्यार को कभी महसूस ही नहीं किया, वो प्यार को जानता ही नहीं। तो जो प्यार को जानता ही नहीं है वो किससे प्यार करेगा? वो नफरत से प्यार करेगा। और मनुष्य ने नफरत से प्यार करना सीख लिया है। प्यार से प्यार करना वो जानता ही नहीं, क्योंकि जब तक वो अपने आप से जो हमारे स्थित जो शक्ति है, जो श्वास हमारी आ रही है जा रही है, जब तक हम इससे प्यार करना नहीं सीखेंगे तो हम प्यार करना सीखेंगे किससे? ये जो आशीर्वाद है, नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। करुण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सरल करि पावा। परंतु ये जो आशीर्वाद है, इस श्वास का आना जाना ही मेरा आशीर्वाद है, अगर इससे प्यार करना नहीं सीखा तो किससे प्यार करेंगे? किससे प्यार करेंगे? अपनी आशाओं से? अपनी आशाओं से प्यार करना सीखा है हमने। घर आते हैं, हमारी अपेक्षा है कि हमारी धर्मपत्नी बढ़िया से हमारे लिए खाना बनाए, और उसने बना दिया उटपटांग। उस प्यार का क्या है? क्या है वो प्यार? अपने बेटे से प्यार करते हैं? मेरा राजा बेटा, कितना प्यारा बच्चा है मेरा, मम्मी पापा मैं फेल हो गया। तो क्या सचमुच में अपनी बीवी से कहोगे, डार्लिंग देख कैसा बच्चा है हमारा, फेल हो गया? क्या कहेंगे उसको? गधा, नालायक, निकम्मा। गधा कहेंगे, गधा है किसका? देखिए, इस संसार के अंदर गधे का ही बच्चा गधा होता है। अपने ही बच्चे को गधा कह रहे हैं तो अपने आप को गधा कह रहे हैं। निकम्मा, ये सिखाया किसने उसको निकम्मा बनना? तो प्यार करना सीखो, इस श्वास से प्यार करना सीखो, इस जिंदगी से प्यार करना सीखो। जब वो प्यार सीखोगे तो और प्यार भी समझ में आए। इस सारे संसार में हर एक चीज बदल गई, और बदलना हमको कभी गवारा नहीं। तो जो इस दुनिया के अंदर फैलाया जा रहा है वो तो घृणा है, नफरत है, क्योंकि मनुष्य को अपने आप से नहीं, नफरत से प्यार हो गया।
2: यू आर लिसनिंग एम संसार ऑनलाइन एफएम।
3: हामीले यसका लागि पहिले एन संचारलाई भनिसकेका छौँ।
4: महँगो छ होला नि त बाबु फेरि।
3: अब महँगो सस्तो भन्ने कुरा त स्तरीय पनि चाहियो, सहज पनि हुनु पर्यो, अन्यको तुलनामा धेरै सस्तोमा काम पनि हुन्छ त्यहाँ।
4: त्यसो भए तिमी नै जाऊ नि त बाकी मदाम।
3: मैले कुरो गरिसकेँ। हेर्नुहोस् त, एन संसारबाट मान्छे आइसक्नु भयो।
0: एन संसार मिडिया प्रणाली कावासोती नबोल्को।

प्रेम संसार मीडिया प्राली कावसोती 3 नवलपुर संपर्क ईमेल एंड संसार मीडिया @gmail.com।

एम संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर संपर्क ईमेल एम संसार मीडिया @gmail.com

प्राइम संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल एन संसार मीडिया @gmail.com

एम संसार मीडिया प्राली कावसोती तिल नवलपुर सम्पर्क इमेल @msansarmedia@gmail.com मोबाइल 9831 31215

एम संसार मीडिया प्राली कावसोते 3 नवलपुर संपर्क ईमेल mobile 9831 31 215

एम संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल mobile 98 31 31 215

एम संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल @mobile 9831 31215।

एम संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल @msansarmedia@gmail.com मोबाइल 9831 31215

प्रेम संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल ansansarmedia@gmail.com मोबाइल 9813 31215

एम संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल @mobile 9831 31215

एम संसार मीडिया प्राली कावसोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल msansarmedia@gmail.com मोबाइल 9831 31215

एम संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल msansarmedia@gmail.com मोबाइल 9831 31215।

0: अगर कभी तुम हमसे बिछड़े तो क्या करोगे,
1: क्या?
0: अगर कभी तुम हमसे बिछड़े तो क्या करोगे,
2: करवट बदलोगे
0: या आहें भरोगे?

एम संसार मीडिया प्राली कावसोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल mobile 9831 31215

प्राइम संसार मीडिया प्राली कावसोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल mobile 9831 31215

एम संसार मीडिया प्राली कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल msansarmedia@gmail.com मोबाइल 9831 31215।

संसार मीडिया प्राणी कावासोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल @sansarmedia@gmail.com मोबाइल 9813312015।

एम संसार मीडिया प्राली कावसोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल @mobile 9831 31 215

एम संसार मीडिया प्राली कावसोती 3 नवलपुर सम्पर्क इमेल ansansarmedia@gmail.com मोबाइल 9831 31215।

0: तत्कालीन परिस्थितिले कार्यक्रमको सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखाएको थियो, तर प्रेम रावज्यूले त्यो भारी वर्षाको पर्वाह नगरी अनिश्चयलाई चिर्दै उक्त कार्यक्रमलाई जीवन्त बनाइदिनुभयो। प्रेमको वर्षाले सबैको हृदयलाई रुजाएर गदगद पारिदिनुभयो।
1: आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्दछु।
2: यहाँ जब मैं आ रहा था तो ये चर्चा थी कि क्या प्रोग्राम कैंसिल कर दें क्योंकि बारिश हो रही है, तो हमने सोचा 11 साल हो गए हैं नेपाल में आए हुए, तो किसी ना किसी तरीके से प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ क्यों आए, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। अब बारिश होने लगी तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, परंतु जरा ख्याल करो, सोचो कि जीवन में भी यही हाल होता है। हर एक दिन सूरज नहीं चमकता, समस्याएं आती हैं और मनुष्य उन समस्याओं को जब काबू में नहीं कर पाता है तो घबराता है। सबसे बड़ी बात है, मैं नुक्स को बढ़ावा देने के लिए नहीं आया हूं। जो भी तुम करते हो उसको बढ़ावा देने के लिए नहीं, पर उसको बढ़ावा देने के लिए आया हूं जो तुम्हारे अंदर अच्छाई है। और अच्छाई क्या है? तुम्हारे अंदर दया है, तुम्हारे अंदर करुणा है, तुम्हारे अंदर प्यास है, तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें हैं जिससे कि मनुष्य का कल्याण हो सकता है। पर इस संसार में फंस के होता क्या है, क्या होता है? जैसे जो चौकीदार होता है, अब बड़े बड़े घरों में ये लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि किसी को दरवाजे के पास रखते हैं, तो कोई भी आता है उसको वो रोकता है, कहता है किससे मिलना है, कौन हो आप, पूछता है ना, कौन हो आप। क्या तुम्हारे इस शरीर रूपी मकान के बाहर भी कोई खड़ा है जो ये पूछता है किससे मिलना है या नहीं? जो आया वह अंदर घुस गया। और ऐसे ही चोर तुम्हारे मकान में घुसता है और चोरी करता है, और किस चीज को चुराता है? तुम्हारे आनंद को चुराता है, तुम्हारे ज्ञान को चुराता है, तुम्हारे समय को बर्बाद करता है। इस संसार के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो मौका मिला है जीवन का, इसको हम बर्बाद न होने दें। बर्बाद सारी चीजों में लग करके हम भूल जाते हैं कि ये जो मौका है, ये जो श्वास अंदर आ रहा है जा रहा है, ये कितना मूल्यवान, इसका मूल्य भूल जाते हैं। ये कार कितने की आएगी, ये मकान कितने का आएगा, ये सब्जी कितने की आएगी, ये तरकारी कितने की आएगी, ये घी कितने का आएगा, ये सारी चीज़ों में फंस जाते हैं और ये जो श्वास है जो अंदर आ रहा है जा रहा है, जो सबसे मूल्यवान चीज है, इसका कोई मूल जिसका लगा नहीं सकते हैं, इसके बारे में भूल जाते हैं। इसीलिए मैं नेपाल में आया हूं, इसीलिए मैं यहां आया हूं तुमको याद दिलाने के लिए कि ये जो मौका है, क्या मानुष जन्म अनमोल रहे, माटी में ना रोल रहे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बहुत बड़ी बात है ये। संत महात्माओं ने बार बार याद दिलाने की कोशिश की है कि मानुष जन्म अनमोल रहे, माटी में ना रोल रहे। इसमें ये नहीं कहा है कि जो हीरा है वो अनमोल है, नहीं, मानुष जन्म अनमोल रहे, मानुष जन्म अनमोल रहे, माटी में ना रोल रहे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रहे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, श्याम सुबेरे बैठ के बंदे उनका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रहे, माटी में ना रोल रहे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो ये याद रखना कि ये बार बार नहीं होता है। अब जो हुआ है, देखो यहां प्रोग्राम रखा गया, किसी को नहीं मालूम था बारिश होगी या नहीं होगी।
3: अब ये पवित्र स्थान है, क्यों पवित्र है, जहां ये प्रोग्राम हो रहा है क्यों पवित्र है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध की जन्मभूमि। तो उन्होंने भी यही हवा अंदर ली और बाहर ली, और वही हवा तुम्हारे अंदर अभी आई और गई और फिर आएगी और फिर जाएगी। लोग तो जाएंगे, देखेंगे कहाँ वो स्थान है, क्या वो स्थान है, परंतु कोई भी इस हवा की तरफ ध्यान नहीं देगा। और ये वही हवा है जो सब संतों ने, जितने भी अवतार हुए हैं, सब ने यही हवा अपने अंदर ली और अपने से बाहर निकाली। तो वही हवा तुम्हारे अंदर आ रही है और तुम्हारे से जा रही है। सोचो, ये प्रसाद है, ये आशीर्वाद है। मेरा कहना है आनंद लो, इस जीवन का पूरा पूरा आनंद लो, वो तेरे ही अंदर है, वो तेरे ही अंदर है, और उसको जानो। और अगर जानना चाहते हो तो हमारे पास इस सेलफोन का पिन कोड है। और अगर नहीं जानना चाहते हो, खुश रहो। और हम बता देते हैं, खुश रहने की तुम कोशिश करोगे पर खुश रह नहीं पाओगे। बिना कोड के ये फोन जो है ना, किस काम का है, इस फोन से तो तुम एक कील भी नहीं ठोक सकते, किसी काम नहीं आएगा।
2: परंतु अगर तुम पिन कोड जानते हो तो इस फोन को खोल सकते हो और फिर किससे बात कर सकते हो, वही विधि हरि हर जाको ध्यान करते हैं मुनिजन सहस 88 सोई हंस तेरे घटमाई, उस हंस से उसका ध्यान कर सकते हो, अपने जीवन को सफल कर सकते हो। खुश रहो, आनंद आनंद आनंद आनंद होना चाहिए तुम्हारे जीवन के अंदर। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।

होस्। खुला हृदयले स्वागत गरौँ विश्व शान्ति दूत लेखक तथा मार्गदर्शक श्री प्रेम रावतज्यूलाई यस मञ्च।

तो आज बहुत ही सुंदर मौका है कुछ सुनने का, कुछ समझने का, क्योंकि ये जो समय हमको मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है। हम संत महात्माओं की पूजा जरूर करते हैं, पर वो जो कहते हैं उसको मानते नहीं हैं। सबसे बड़ा चक्कर यही है। पूजा करने के लिए तो हम तैयार हैं, ये सारी चीज़ें करने के लिए हम तैयार हैं, तीर्थ व्रत करने के लिए हम सब तैयार हैं, जबकि महापुरुषों ने कहा है इससे मेरा ज्ञान नहीं होता है, इससे तू मेरे को नहीं मिल पाएगा। और जो सच्चाई है क्या उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं? सच्चाई क्या है? तीन चीजें हैं, सिर्फ तीन चीजें हैं। और क्या है वो? तुम्हारा जन्म हुआ, ये सच्चाई है, ये तुम्हारी सच्चाई है, ये तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारा जन्म हुआ। अगर तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होता तो तुम यहां नहीं बैठे होते। तुम्हारा जन्म हुआ। दूसरी सच्चाई, तुम जीवित हो, तुम्हारे अंदर श्वास आ रहा है और जा रहा है, ये तुम्हारी दूसरी सच्चाई। और एक और सच्चाई है, एक दिन तुमको यहां से जाना है। इन तीन सच्चाइयों के बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते, ये सच्चाइयां हैं। तुमसे पहले जितने भी लोग इस संसार में आए उनके लिए भी ये तीन सच्चाइयां थी। अब आती है बात कि जब तक ये श्वास आ रहा है और जा रहा है हमको क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बस यहां सारी बात खराब होती है। आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए बारह बाट। जैसे ही इस संसार की हवा लगती है हम भूल जाते हैं इन तीन सच्चाइयों को। स्वर्ग है कहां? जहां वो क्या विधि हरि हर जाको ध्यान करत है, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिसका ध्यान करते हैं, विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं, मुनि जन सहस अठासी, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। वहां स्वर्ग है, असली स्वर्ग वहां है। और जो इस जीवन के अंदर वो बता दे, दिखा दे, ताकि उसकी पहचान हो जाए। अभी किसी ने हमको चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा कि कई बार जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं, सुनो मेरी बात, जब हम कई बार अभ्यास के लिए बैठते हैं तो हमको एहसास होता है कि हमारा मन भटक रहा है। तो ये तुमने सुना होगा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो ये व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात कर रहा था, GPT से बात कर रहा था। तो जानती हो क्या कहा GPT ने?
जीपीटी ने कहा तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो, तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो कि तुमको पता लग गया है कि तुम्हारा मन विचलित है। जब मैंने ये बात सुनी मैंने सोचा हाँ भाई बात तो सही है, क्योंकि सारे दिन जो हमारा मन विचलित होता है हमको एहसास नहीं होता है कि विचलित हो रहा है, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है कभी उधर भाग, सारे दिन भागता रहता है और हम उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। परंतु जब अभ्यास के लिए बैठते हैं और विचलित होता है तो पता लगता है हाँ वो उधर जा रहा है उधर जा रहा है उधर जा रहा है उधर जा रहा है उधर जा रहा है, और फिर नहीं मेरे को यहीं रह के अभ्यास करना है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। माँ या बाप स्कूल के आगे खड़ा हुआ है, सारे बच्चे जो निकल रहे हैं उनको देख रहा है, परंतु देखते हुए भी वो उनको नहीं देख रहा है क्योंकि वो एक को देखना चाहता है जो उसका बेटा है या उसकी बेटी है। बस ठीक उसी प्रकार से मन इधर भागता है मन उधर भागता है, और जिसको पहचान है कि कहां भागना चाहिए कहां होना चाहिए, कितनी बड़ी बात है कि उसके पीछे भागने की तुमको जरूरत नहीं है। अपने जीवन

की जरूरत है। लोग अभ्यास नहीं करना चाहते, लोग अभ्यास नहीं करना चाहते। खाने खाने को क्या करना पड़ता है? खाना पड़ता है। पानी को क्या करना पड़ता है? पीना पड़ता है। दृश्य, कोई सुंदर से सुंदर दृश्य हो, उसको क्या करना पड़ता है? उसको देखना पड़ता है। ज्ञान का अभ्यास करना पड़ता है। बिना ज्ञान मिले अभ्यास कर नहीं सकते, और बिना ज्ञान का अभ्यास किए बिना तुमको विवेक नहीं मिलेगा। विवेक क्या होता है? रात को जब अंधेरा हो जाता है, आंखें तो तुम्हारी ठीक है पर दिखाई कुछ नहीं देता है, नहीं? हमारे साथ एक दिक्कत तो रहती है, हम जगह जगह जगह जगह भ्रमण करते रहते हैं, तो एक कमरे में तो हम रहते नहीं हैं। जब नया नया कमरा मिलता है तो कहीं पलंग इधर लगा हुआ है, कहीं पलंग उधर लगा हुआ है, कभी गुस्लखाना उधर है, कभी गुस्लखाना उधर है, कभी गुस्लखाना उधर है। अब जैसे रात को उठो तो सबसे पहले प्रश्न आता है, हम हैं कहाँ? बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, हम हैं कहाँ? फिर टटोलना पड़ता है। तो हमने एक कानून बनाया, वो कानून ये है कि पलंग के पास एक टॉर्च रखी हुई है। टॉर्च रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? जब टटोलने की बारी आती है तो हमको सब कुछ टटोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज को टटोलने की जरूरत है, और वो है वो टॉर्च। टॉर्च जलाई और सब दिखाई देता है कहां जाना है। जो चीज असंभव थी वो ज्ञान के द्वारा संभव हो जाती है। तुमको क्या पकड़ने की जरूरत है? सब कुछ टटोलने की जरूरत नहीं है, सब चीजों का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ ज्ञान का अभ्यास करने की जरूरत है, अगर तुम अपने हृदय में उस शांति का अनुभव करना चाहते हो।